0: FM.
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात. भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज. अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब.

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।